हाय, मैं हूँ सोना महापात्रा और आप सुन रहे हैं रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

0: दुश्मन आसू दे गनीम आसू दे कितनी भी हुशियार।
1: अरे आसू दे की?
0: अरे दुश्मन आसू दे गनीम आसू दे कितनी भी हुशियार।
1: अमन
0: शिवराज।

पर हम सदे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि श्रीवंदना लोच कर करके पधारे हुए हैं। आज लोच हुआ है ना, पहला नंबर उनका लगा हमारे चारों में। लोच भी हुआ है और रोज गाते उनका पारना भी हुआ है। तो एक आराम कर रहे हैं, आराम कर नहीं रहे, आराम करा रहा है हमें उनको, दरवाजा बाहर से लगा के आ गए। लोच की साता पूछ लेते पहले ना, बोलेंगे मेरे पीछे अहो प्रवर्तक से जी महाराज साहब, आप श्री का पजसना कप का लोच संपन्न हुआ है, आपको लोच की साता है, लोच के बदले में जो भी आप हमें पचकान देंगे हम स्वीकार करेंगे। महाराज साहब की ओर से है एक एक उपास, मेरी ओर से है एक एक व्यक्ति को व्याख्यान में लेकर के आना। उपास हो रहा है, एक व्यक्ति को लाना भारी है, ऑप्शन है आपके पास, है ना। ऐसे महाराष्ट्र प्रवर्तक सिंह जी के चरणों में हमारे सभी की वंदना आरज हो। स्नेह से आलोक ऋषि जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, कैसे ये जीवन चलता है, जाने तब भी वैसे ही चलता है, नहीं जाने तब भी वैसे चलता है, जानेंगे तो चेंज कर सकेंगे। जीवन का विज्ञान क्या है वो समझने के लिए तीर्थंकर परमात्मा ने नौ तत्व दिए, नौ तत्व का विज्ञान दिया है। और जिन जिन जीवों ने नौ तत्व का साइंस समझा उन उन जीवों ने इस संसार सागर से तिरने का सहज मार्ग सुना। और जिन जीवों ने संसार से परेशान हो गए, मोक्ष में जाने की तमन्ना हो गई, लेकिन नौ तत्व का साइंस नहीं समझा, उनके सारे पराक्रम, उनका सारा पुरुषार्थ उल्टा चला गया। ये नौ तत्व बड़े गजब के हैं। अरे रूटीन में आप जानो नहीं जानो चलता, आसरो चालू है, श्वास के माध्यम से आसरो चालू है, श्वास के माध्यम से आप आश्रय कर भी रहे हो, दूसरों को करा भी रहे हो। याद आ रहा है, अपनी श्वासोच्छ्वास के माध्यम से हम दूसरों को भी आश्रय करा देते हैं। इसलिए तो कोविड के समय में मास्क लगाने के लिए कहा था कि तुम्हारा वायरस दूसरे के पास नहीं पहुंचे और दूसरे का वायरस तुम्हारे पास नहीं आई। केवल उस वायरस की बात नहीं, श्वास के माध्यम से, श्वासोच्छ्वास के माध्यम से अनोइंगली जितना आश्रय होता है और वो जितना गहरा होता है, जितना प्रभावशाली होता है, उतना बाकी किसी भी इंद्रिय का आश्रय उतना गहरा नहीं होता है। सारे आश्रयों का मूल आधार कोई है, आश्रयों के संवर का, बंध का, निर्जरा का आधार कोई है कि जिस पर हम कंट्रोल करें तो सारा आश्रय, संवर, बंध और निर्जरा का कैरेक्टर चेंज हो सकता है। बहुत सारे गुरु है उसके, तो उसमें सबसे पहले नंबर किसी का है तो श्वासोच्छ्वास का है। इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के लिए आगम में दो शब्द गए हैं, एक गया है आनापान और एक गया है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास उसको कहते हैं जो अनकॉन्शियसली चलते रहता है, और आनापान उसको कहते हैं जिसको आप बुद्धिपूर्वक
श्रद्धापूर्वक सजगता से करते हैं, वो आपकी जिंदगी को चेंज करके रख देता है। तो इस श्वासोच्छ्वास के माध्यम से कैसे असर हो रहा है, इसलिए ये साधना जो चलती है वो श्वास से शुरू होती है। जिसने श्वास साध लिया उसकी साधना सिद्ध हो गई, और जो श्वास को नहीं साध पाया जो श्वास को उसे नहीं साध पाया उसकी सारी आस मर गई, और जिसने श्वास को जीत लिया समझ लिया उसकी जिंदगी में विश्वास आ गया। श्वास लेना कि नहीं लेना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे लेना और कैसे नहीं लेना आपके हाथ में है। यदि श्वास लेना आपके हाथ में होता ना तो तुम इतने व्यस्त हो कि श्वास लेना ही भूल जाते। ये तो अच्छा है कि उस श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के कारण से आपके बिना जाने श्वासोच्छ्वास चलते रहता है, लेकिन इसको कैसे लेना है ये सिखाते थे कि किस समय श्वास कैसे लेना है, किस समय श्वास छोड़ना तो कैसे छोड़ना, और किस समय श्वास को चेंज करके पूरे कैरेक्टर को चेंज कर देना है। ये श्वास की कला है, ये श्वास की कला है। आचार्य भद्रबाहु के इतिहास का एक पन्ना चलता है कि 12 साल का जब अकाल गिला भारत में, तो बहुत सारे साधु साध्वी ज्ञानी ध्यानी साधु साध्वी का आयुष्य पूर्ण हो गया है। और 12 साल के अकाल के बाद जब समय इकट्ठा हुए तो पता चला कि 14 पूर्व का ज्ञानी अपने में कोई बचा नहीं। खोज की गई तो आचार्य भद्रबाहु एक बचे थे, और आचार्य भद्रबाहु नेपाल के पहाड़ियों में थे। कहां थे? नेपाल में थे, वहां वो साधना कर रहे थे। संघ ने देखा कि भाई यहां पर 14 पूर्व का ज्ञान जिनके पास है कोई बचा नहीं है, और जिन शासन के अनमोल विरासत 14 पूर्व का ज्ञान जिसमें सारी लब्धियां सारी शक्तियां सारा साइंस, और वो ज्ञान होना चाहिए और देने वाला कोई नहीं है, आचार्य भद्रबाहु है। तो संघ ने उनको रिक्वेस्ट करी, विनंती भेजा, 2 संतों को भेजा कि संघ आपसे प्रार्थना करता है कि संघ में अब आपके जितना ज्ञान है कोई नहीं है, आप आपके 5 जो जिन शासन की संपदा है उसको संघ को प्रदान करने के लिए यहां पर पधारे। और उस समय आचार्य भद्रबाहु श्वासोच्छ्वास की अनापान की एक गहरी साधना में लगे थे, महाप्राण साधना। नहीं समझो तो भक्त शब्द समझ ले जो महाप्राण साधना। उस महाप्राण साधना के बाद साधक की चेतना, साधक का ब्रेन, साधक की पूरी स्मरण शक्ति, अवधारणा इतनी प्रखर, इतनी प्रस्फुटित, इतनी प्रगल्भ हो जाती थी। ये जो आप नौकर मंत्र में कहते हो, नौकर मंत्र है 14 पूर्व अनुसार, उनके लिए वो एक नौकार मंत्र के स्मरण करने में 14 पूर्व का स्वाध्याय कर लेते थे। कितने? एक नौकार मंत्र के स्मरण करते करते उनका 14 पूर्व का स्वाध्याय होता है। 14 पूर्व किसको कहते हैं बताएं आपको? एक पूर्व उसको कहते हैं
कि एक हाथी के वजन बराबर शाही, उस शाही से जितना लिखा जाए, हाथी के वजन के बराबर शाही से जितना ज्ञान लिखा जाए उसको एक पूरब कहते हैं। और 14 हाथी के वजन जितने शाही से जितना लिखा जाए वो 14 पूरब का ज्ञान। उस महाप्राण की साधना के माध्यम से अंदर की चेतना, अंदर की बुद्धि, प्रतिभा इतनी तीव्रतम हो जाती थी, इतनी प्रकट शक्तिशाली कि एक अनोखा मंत्र के बोलने में 14 पूरब का सोदय हो जाए। और उस साधना में लगे थे। जो विनंती उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं मेरी महाप्राण की साधना में लगा हूं। ये उस समय के संघ की बात है जिस संघ के पास श्रद्धा का, संयम का, चरित्र का बल था। जिस संघ के पास श्रद्धा, संयम और चरित्र का बल होता है वो आचार्य को क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले संघ ने विनंती करी थी आचार्य भद्रबाबू को, और जब उत्तर आया नकारात्मक तो एक क्वेश्चन भेजा उनके पास, एक सवाल भेजा उनके पास कि संघ की आज्ञा और संघ की संपदा, संघ को देने से इनकार करने वाले को क्या प्रायश्चित आता है, क्या दंड आता है उसको। लेकिन उस संघ की बात है जो श्रद्धाशील है, संयमशील है, चरित्र संपन्न है। भाष्य में कहा गया कि जिसके पास श्रद्धा, संयम और चरित्र नहीं है वो केवल अस्थि पंजर है। और जब ये सवाल भद्रबाहु के पास पहुंचा तब तो भद्रबाहु ने संघ को विनंती करी कि मैं संघ के शरण में हूं, संघ के आश्रय में हूं, मेरी साधना को संघ अनुमोदन दे, मेरे पर अनुग्रह करे, मैं ज्ञान दान करने के लिए तैयार हूं, आप किसी को यहां भेज दीजिए तो उनको मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। ये महाप्राण के साथ आगे बहुत बड़ी लंबी कहानी, उसमें स्थूलीभद्र भी गए थे और क्या क्या विद्या सीखी उन्होंने, कैसी कैसी विद्या सीखी। वही और एक दिन स्थूलीभद्र की बहनें उनके दर्शन के लिए आ रही थी और स्थूलीभद्र गुफा में थे। उन्होंने बहनों को आते हुए देखा और देख करके अब नजर के दृष्टि में बहनों को नहीं दिखे वो, लेकिन बहनों को उन्होंने देख लिया और उतनी देर में

के गुरु के पास पहुंची, भरभौंक के पास। बोले वहां भाई नहीं है, वहां शेर है। कहानी किसकी? कहानी में मत उलझना, कहानी में मत उलझना। बात किसकी चल रही है? एक श्वास में कितना असर होता है, एक श्वास में कितना संवर हो सकता है, एक श्वास में कितनी निर्जरा हो सकती है, एक श्वास में कितना बंद हो सकता है। बात उसकी चल रही है। आचार्य भद्रबाहु ने अपना ज्ञान का उपयोग लगाया और उनको पता चला कि स्थूलीभद्र ने जो सीखा है वो हजम नहीं किया है। इसके अंदर में अभी भी दूसरों पर रोब जमाने का आसरो चल रहा है, शो का आसरो चल रहा है, अपने आप को जीने का नहीं तो अपने आप को शो करने का आसरो चल रहा है। और बहनों को उन्होंने कहा कि वापस जाओ, वहीं पर है। गई, बड़े चकित हुई बहने, हल्का सा अहंकार का आसरो हो गया, गहरा अहंकार का आसरो हो गया। बंध पड़ गया है, क्योंकि उसमें खुशी मना ली कि बहनों के सामने जब बहने आई तो कहा देखा मैंने क्या सिखाया, क्या शक्ति मेरे पास। ज्ञान ग्रहण का समय हुआ, भद्रबाहु के पास पहुंचे, वंदना करी। अगला पाठ लेने के लिए भद्रबाहु ने कहा नहीं, अब तुम्हें नहीं सिखा सकता हूं कि तुमने ये आश्रय किया है, तुमने ये उद्योग किया है। क्षमा क्षमा क्षमा, जैसे हम भी करते, सारे सब करते रहते हैं। याद रखना, क्षमा केवल वैर के शमन के लिए होती है। किसके लिए होती है? वैर भाव को समाप्त करने के लिए क्षमा होती है। नोट कर लीजिए दिमाग में, इसके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत ठनाव ठनम होगा इसका। ये गलती की क्षमा नहीं है, गलती के लिए प्रायश्चित है, गलती के लिए प्रायश्चित है। गलती के लिए क्षमा का विधान जिन शासन में नहीं है, केवल कहीं पर तुम्हारे रिश्तों में वैर भाव का जन्म हो गया हो, वैर के समापन के लिए, वैर को समाप्त करने के लिए क्षमा शब्द होता है। क्षमा नयन मंते जीवे किम जनई, वो पूरा पाठ तुम्हारे पास आएगा। मैत्री भाव का जन्म होता है, प्रह्लाद भाव का जन्म होता है, निर्भय होता है। मैत्री भाव के लिए क्षमा बनाए। जिन शासन में गलती का प्रायश्चित ही है, मुझे पता है आप कितना ही ध्यान से सुन रहे होंगे, इसको जीने के लिए तुम्हें समय लगेगा, मुझे पता है। जो मैं देख चुका हूं मेरे अरमिजा के ट्रेनर को, मैं ये बात कितनी बार समझा चुका हूं कि आलोचना मिच्छामि दुक्कड़म, एक गलती के लिए मिच्छामि दुक्कड़म प्रायश्चित है। मिच्छामि दुक्कड़म क्या है? प्रायश्चित है। आलोचना क्या है? प्रायश्चित है। प्रतिगमन क्या है? प्रायश्चित है। प्रायश्चित के 10 प्रकार हैं, और पहला प्रायश्चित आलोचना है, दूसरा प्रायश्चित प्रतिक्रमण है, तीसरा प्रायश्चित उभय है, चौथा प्रायश्चित विवेक है, और पांचवें छठे प्रायश्चित में तपस्या शुरू होती है। क्षमापना प्रायश्चित नहीं है। क्षमापना है तुम्हारे मन में किसी को लेकर के वैर भाव तैयार हुआ है, जिसकी हमने 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं।
कि राग द्वेष के कारण से जब वस्तुओं के आधार पर राग द्वेष करते तो कर्म का बंध होता है।

और व्यक्ति को लेकर के राग द्वेष करते हैं तो वैर्य मैत्री का बंध होता है। थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए रास्ता छोड़ के जा रहा हूं। कल तृतीय शिष्य महाराज साहब रात्रि में प्रतिगमन के बाद बैठे थे और पूछ रहे थे कि ये जो वैर का है, इससे यदि कभी किसी के विषय में मेरे मन में, उसे कहा आपके लेकर के, यदि कभी मेरे मन में वैर भाव आया हो तो अब उसको क्या करेंगे और क्या होता है इसके कारण से। तो जो उसको एक्सप्लेन किया, आप देखते हो ना आपके जीवन में जिनसे प्रेम करते हो उन्हीं से नफरत करते हो, ये सर लो, जो कभी कभी प्यारे लगते वही खारे लगते हैं। कारण क्या है? तुझ माझ पटे ना अन तुझा बिना कदे ना, ये क्यों हो गया ऐसा? जहां स्नेह के संबंध में, प्यार के संबंध में तुमने कभी निंदा करी, अनादर किया और उसका तुमने सामने वाले से जाकर के दिल साफ नहीं किया, तो इस स्नेह के संबंध में ये जो कभी खट्टा कभी मीठा कभी कड़वा कभी मीठा ये जो चलता है उसका कारण यह है। और इसका दुर्गामी परिणाम क्या होता है? जीवन की यात्रा स्नेह से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? बोलो, स्नेह से शुरू होती है। और स्नेह को श्रद्धा तक पहुंचाना होता है। कहां तक? परम प्रेम स्वरूप भक्ति ही। नारद ने भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा नारद सूत्र में, परम प्रेम स्वरूप भक्ति। जब ये प्रेम परम हो जाता है तब ये प्रेम भक्ति हो जाती है। और प्रेम जब अधम रहता है तब तुम्हारा संसार की वासनाएं चलती है। इस प्रेम को परम करना है, इसमें कभी प्रेम जिसे करते हो उससे अपने मन में कभी द्वेष मत आने दो। रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस है, या तो भगवान से प्यार करो, या तो भगवान से प्यार करो, या जिससे प्यार करते हो उसको भगवान बनाओ। स्नेह को श्रद्धा तक पहुंचाना ये साधना का उद्देश्य है। राग को श्रद्धा में पहुंचाना, और ये जब बीच में एक कांटे आते हैं ना, अबोले के आगे आएगा उत्तराध्यन सूत्र के आराधना चली तब चलेगा, ये मत करिए। तो गलती का प्रायश्चित है, गलती की क्षमापना नहीं है। और प्राय 99% मोर देन 99% आपसे गलती हुई और प्रवीण ऋषि ने आपके तरफ देखा, महाराज साहब माफ करो, हमें के करके थक गया हूं, कि गलती की क्षमा मत मांगो। क्षमा मांगने से गलती से दूर नहीं हो सकते हो। डॉक्टर से, डॉक्टर ने तुमको क्षमा कर दी, तुम्हारे बच्चों को जो टीचर के पास पढ़ रहा है और बच्चे ने गलती करी और टीचर ने उसको माफ कर दिया, बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी? कोचिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनी ने गलती कर दी है, फिर माफी, माफी से गलती सुधरेगी या करेक्शन से सुधरेगी? तो करेक्शन करना चाहिए कि क्षमा मांगनी चाहिए? आप क्या करते हो? माफी मांगते हो, गलती वैसी की वैसी रह जाती है। वापस एक बार दोहरा रहा हूं, क्षमापना केवल दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए है।
क्षमापना केवल दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए, दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए क्षमापना है, स्वयं के गुनहे को छिपाने के लिए, स्वयं के गलती की माफी मांगने के लिए क्षमापना का विधान जिन शास्त्र में नहीं है, वहां तो करेक्शन ही चाहिए। तसोत्तरी कन्निनम पायच्छित कन्निनम विसो ही कन्निनम विसल्ली कन्निनम पावानम कम्मानम निगाह नठाए ठामिका संगम। जो मेरे से विराधना हुई है उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, प्रायश्चित है गलती का, और अस्तुति भद्र क्षमा मांग रहा है। बोले नहीं, तेरे प्रति मेरे मन में कोई वैर की भावना नहीं है, लेकिन जो तीर्थंकर का शासन का नियम है उसका तूने उल्लंघन किया है। रामेश्वर, उसका तूने उल्लंघन किया है, तू इस ज्ञान ग्रहण करने के पात्र नहीं रहा। मेरे स्नेह का पात्र तू है, लेकिन ज्ञान का पात्र नहीं रहा। इस साधना का तू पात्र नहीं रहा, इस साधना को ग्रहण करने के लिए तू योग्य नहीं रहा। और जिन शासन की टोटली 100% बनाई है, अयोग्य को देना नहीं। जो जस पावगो सो तस दायो, जो जिसके योग्य है वही उसको देना चाहिए, और तेरी योग्यता भी इस ज्ञान को ग्रहण करने की नहीं रही। कितने आंसू बाहे स्तुति बदल रहे, कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जिनकी ट्रीटमेंट हो सकती है, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जिनकी सजा ही भुगतनी होती है, ट्रीटमेंट होती नहीं है। बीमारी दो प्रकार की होती है ना, जिसका इलाज किया जा सके, जिसका लाइलाज, नो ट्रीटमेंट। तीर्थंकर की चरम आज्ञा का तूने उल्लंघन किया है, इसका प्रायश्चित नहीं है, इसके परिणाम ही तुझे भुगतने पड़ेंगे। प्रायश्चित देते किसका? जो बीमारी प्रायश्चित से ठीक हो जाए उसका। बहुत गहरा है शासन, और बहुत सही, बहुत प्रैक्टिकल है। ट्रीटमेंट देने के पहले देखते हैं कि ट्रीटमेंट से सुधरेगा कि बिगड़ेगा। सुधरता हो तो ट्रीटमेंट है, नहीं सुधरता हो जय जय जयनेन्द्र है। नहीं, फिर स्तुति भद्र ने संघ को समाचार दिए, संघ आया, संघ ने विनंती करी कि हम संघ हैं, और संघ आपसे आग्रह करता है कि इनको अगला ज्ञान दीजिए। बोले नहीं, संघ उसी बात को मुझे पर आज्ञा दे सकता है जो प्रभु की आज्ञा में है। प्रभु के आज्ञा की बाहर की संघ आज्ञा करता होगा तो संघ प्रभु आज्ञा से बड़ा नहीं है। प्रभु आज्ञा का पालन मुझसे नहीं होता होगा तो वह संघ मुझसे करा सकता है, लेकिन प्रभु आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए संघ मुझे नहीं कह सकता है। और फिर संघ ने निवेदन किया, फिर आग्रह किया, कम से कम, कम से कम अर्थ मत बताइए, लेकिन शब्द दे दीजिए। क्या दे दीजिए? अर्थ मत बताइए, विधि मत बताइए, रहस्य मत बताइए, लेकिन शब्द दे दीजिए। और आचार्य भद्रबाहु को पता था, जिस शब्द का अर्थ पता नहीं वो शब्द व्यर्थ होता है। और फिर स्तुति भद्र के पास केवल 10 पूरब का ज्ञान रहा, अर्थ सहित 4 पूरब के केवल शब्द रहे। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक, और उस समय यदि जिस समय मन में ये अहंकार आया, उस समय अपनी श्वास को संभालना होता है। मन को संभालना है
तो दो को संभालना पड़ता है। मन को संभालना हो तो दो को संभालो, एक कान को एक सांस को। मन को बिगाड़ने वाले दो ही है, एक तो कान बिगाड़ता है, एक सांस बिगाड़ती है। यदि सांस का सूत्र तुम्हारी समझ में आ गया, मैंने अगले 2-3 दिन तक तुम्हें इस श्वास के प्रयोग पर चर्चा करनी है, चलेगा ना? लेकिन प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। तुम्हें पता चलेगा कि क्यों जिन शासन को सर्व कल्याणकारी कहते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि कर्म का सिद्धांत क्या है, धर्म का सिद्धांत क्या है। कर्म तुम्हें भोगने के लिए कहता है, कर्म तुम्हें भोगने के लिए कहता है, और धर्म तुम्हें जीतने के लिए कहता है। तो वाक्य ध्यान में आ रही है कि जका बांधे जका भोगना पड़ेगा, एक कर्म का सिद्धांत है। जो बांधे वो भोगने ही पड़ेंगे, ये किसका सिद्धांत है? और धर्म का सिद्धांत है, जो बांधे वो तो क्षय कर सकता है, जो बांधा तो उसको चेंज कर सकता है, जो बांधा उसको तो जला सकता है। बहुत बार तुमने सुना होगा, आपके पास छोटे छोटे वाक्य निम हाकिम कतरे जानों चलते रहते हैं, जिनको उपाय पता नहीं होते ना, और उनके पास तुम समस्या का समाधान, अरे भो अब लारा जन्म रा कर्म भोगना पड़ी लाना, कर्म किने छूटा है, भगवान ने भी कर्म झेलना पड़े ना। ये वाक्य जो है ना, ये तीर्थंकर की आशातना करने वाला वाक्य है। जब आप कहते हो ना कि भगवान महावीर को भी कर्म भोगने पड़े, भगवान महावीर ने कर्म भोगे नहीं, कर्म क्षय करे। क्या करे बोलो? भोगना किसको कहते हैं? जिसमें दुख की अनुभूति हो जाए। और तीर्थंकर महावीर के जीवन में जब भी कुछ प्रसंग आया, जिसको आप अनुकूल कहो कि प्रतिकूल कहो, उस प्रसंग से वो ऊंचाई पर पहुंचे, नीचे नहीं पहुंचे। उन्होंने ऐसा संघर्ष नहीं किया, उसका उपयोग किया। सव कम पही नठा पक्क मंती महेशिनो। महावीर प्रभु फरमाते हैं, सारे कर्मों को क्षय करने के लिए जो पराक्रम करता है वो साधक है, वो महासाधक है। जो कर्म को भोगने के लिए लगता है वो संसारी है। ये धर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत क्या है? जका बांध्या भोगना पड़ेगा। और धर्म का सिद्धांत क्या है? जो बांधे हैं उनको क्षय करना है। दवा किस लिए लेते हो? ठीक होने के लिए। धर्म किस लिए लेना चाहिए? कष्ट भोगने के लिए। दुख मुक्ति के लिए धर्म है कि दुखी होने के लिए धर्म है? तो समझो थोड़ा सा। ये सारे श्वास के प्रयोग है ना, बहुत सारे प्रयोग है, प्रयोग एक नहीं, बहुत सारे प्रयोग है। प्रयोग की लंबी श्रृंखला है। और आप यदि प्रयोग करने के लिए तैयार रहोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो गुरुदेव के चरणों में समर्पण करने के लिए आया हूं, यहां से मुझे कुछ बचा करके ले जाना नहीं। आखिरी दिन तो मैंने सब छोड़ देना है। समर्पण यानी समर्पण ही होना है। मैंने यहां से कुछ लेके नहीं जाना साथ में, मैं यहां लेने के लिए आया ही नहीं हूं। मैंने यहां केवल समर्पण ही करना है मुझे। जो जो है वो सब ओ श्रामी ओ श्रामी ओ श्रामी करना ही। वो लक्ष्य लेकर के आया हूं यहां पर, वो तय करके आया हूं कि यहां से चलते समय केवल तू प्रवीण रहेगा, कुछ नहीं रहेगा दूसरा। सबसे मुक्त होना है। ओके,
तो ये श्वास का प्रयोग है। कैसे श्वास आता है? एक श्वास आता है श्वासोच्छ्वास नाम पर्याप्ति नाम कर्म से। किसे? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नाम कर्म से। और एक श्वास चलता है तुम्हारे अंदर की श्रद्धा अवधान सावधान चेतना से, और वहां तुम चेंज करना सीख गए। तो सारा कुछ तुम सीख गए। श्वास जब आता है तो बताता है कि तेरे इस कर्म का अंदर में जागरण हो रहा है। ये जो अरब इन्फ्लुएंसर के पार्टिसिपेंट है बच्चे, आज राइजिंग सन के आए हुए हैं, इनको ये छोटे छोटे प्रयोग दिए हुए, इनको थोकड़े नहीं सिखाए मैंने, पर रोकड़ा पक्का सिखाया। बच्चे स्टडी कर चुके जाते एग्जाम में, और वो क्वेश्चन पेपर देखा कि दो क्वेश्चन के उत्तर आते हैं, तीसरे क्वेश्चन के पास अटक जाते हैं। पढ़ा हुआ है लेकिन क्या पढ़ा हुआ याद नहीं आता है। सिंपल प्रयोग देता हूं, सिंपल एक काम कर, देख कौन से नोस्ट्रल से ब्रीथ चल रही, लेफ्ट से के राइट से, और जिस भी नोस्ट्रल से ब्रीथ चल रही है उसको बंद कर दे, दूसरा नोस्ट्रल शुरू होने तक उसको बंद रख, और जैसे दूसरा नोस्ट्रल शुरू हो जाएगा जो तुझे याद नहीं आ रहा है वो याद आ जाएगा। और सिंपल है, उसके पीछे का साइंस समझ लो। साइंस समझ लोगे तो तुम्हें चमत्कार नहीं लगेगा, और साइंस नहीं समझोगे तो उल्टा सुल्टा करोगे काम। ऐसा हुआ 2000 के 6 के चतुर्मास के समय में, पुणे के चतुर्मास समय में, मैं अपने कोई आया मेरे पास तपस्या करने वाला है, उसको प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने कहा श्वास चेंज कर ले, उसको आराम हो गया। अब पड़ोस में बैठा था डेढ़ शाना, उसके पास कोई पहुंचा, पेट दुख रहा है, मैंने श्वास चेंज कर लिया। अब उसने श्वास चेंज किया ना, पेट दर्द बढ़ गया, फिर वो मेरे पास आया, बोले उसका पेट दर्द बढ़ गया। मैंने कहा क्या किया तूने? बोले ऐसा। मैंने तुझे किसने कहा था उद्योग करने के लिए? उसका सीक्रेट जाने बिना तू करेगा तो नीम हकीम खतरे, और इसलिए बहुत सारे ऐसा चलता रहता है, इसलिए कई बार बोलने में संयम भी करना पड़ता है। उसका साइंस क्या था कि जिस नोस्टल के चलते हुए तुमने पढ़ाई करी है, नोस्टल दो है, ब्रेन भी दो है, लेफ्ट राइट, नोस्टल भी दो है लेफ्ट राइट, लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल राइट स्वर के पास है, राइट ब्रेन का कंट्रोल लेफ्ट के पास है। आप तुमने पढ़ाई करी होगी दूसरे स्वर में, आप फाइल उधर है, फाइल किधर है? उधर है, और तेरा चल रहा है यह स्वर, इधर फाइल है नहीं। अब तो कितना ही तान कर ले, तुझे क्या करना पड़ेगा? उधर की फाइल ओपन करनी पड़ेगी, और उधर की फाइल ओपन करने क्या है? ये स्विच है। ये क्या है? ये स्विच है। इस स्विच को चेंज कर दिया, ये स्विच बंद कर दिया, ये स्विच चालू कर दिया, उधर की इस फाइल शुरू हो गई। लेकिन ध्यान में रखना, अब उसने पढ़ाई करी होगी तो याद आएगी ना? नहीं तो थे क्यों वाले मारा सब मैं करी हो, लेकिन मैंने तो आयो को नहीं, तू पढ़ी होशी तो आई ना भैया। फाइल अंदर होगी तो ओपन होगी, और फाइल ही नहीं बनाई तो ओपन होने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो कहने के लिए कई पढ़ाई करेंगे जरूरत को नहीं रहे, तू तो जा तो कोई याद नहीं आई ना, मारे सब किए याद नहीं आवे ना, श्वास बद चेंज कर लीजिए, मारो ही कल्याण और नोरो ही कल्याण है ना। स्टडी करी होगी, कमाई करी होगी, उस अकाउंट में तुम्हें पैसे जमा होंगे तो चेक काम में आएगा, चेक बाउंस हो जाएगा है ना।
इसलिए इतना धीमे धीमे बोल रहा हूं कि प्रयोग है। क्या है प्रयोग? आपको गुस्सा आ रहा है और गुस्सा एकदम नहीं आवे, गुस्सा एकदम नहीं आवे, बुखार एकदम नहीं आवे। बुखार एकदम आवे कि बॉडी में पहले कहीं हुए, थोड़े शरीर अनेजी हो जावे, बॉडी टूटने लगे, थोड़ी हरारत शुरू हुए, ट्रीटमेंट कर दी जाओ। हाँ जरा 102 डिग्री मिला, 101 डिग्री मिला। भगवान महावीर कहते हैं जिस समय शुरू हुआ उस समय ट्रीटमेंट करेगा तो आराम हो जाएगा, गुस्सा भी एकदम नहीं आवे। गुस्सा भी कैसा है? कोई अपना से बात करे थोड़ा थोड़ो अनबेरेबल, थोड़ा थोड़ा हो, थोड़ा जिस समय तुम्हारे अंदर में लगन आ रही है उसी समय एक छोटा सा काम करना, उन्हें कहीं नहीं करना। गुरु स्वास्थ्य चेंज मत कर जो, स्वयं कर जो, है ना, स्वयं देख लो अब कहीं चल रही है, कितने चल रही है, लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है। जो चल रहा है उसको बंद कर देना, जो चल रहा है उसको बंद कर देना। वो बोल तो रही ना पर थकी डिक्शनरी चेंज हो जाएगा। दो डिक्शनरी अपने पास, कितने डिक्शनरी है? टू ब्रेन्स टू डिक्शनरी। एक डिक्शनरी इमोशन की, एक डिक्शनरी है इंफॉर्मेशन की, एक डिक्शनरी भावना की, एक डिक्शनरी लॉजिक की। जब लॉजिक से चलना हो तो दूसरा लेफ्ट ब्रेन लगता है। ये सारे ब्रेन का खेल है। और ये ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? श्वास कंट्रोल करता है, इसका स्विच यहां पर है। और ये केवल ब्रेन को ही कंट्रोल नहीं करता है, ये तुम्हारे कार्मन शरीर को भी कंट्रोल करता है। किसको? ये तुम्हारे तेजस शरीर को भी कंट्रोल करता है, ये तुम्हारे औदारिक शरीर को भी कंट्रोल करता है। बस समय हो रहा है, चार पर्याप्ति के बिना जीव होता नहीं। कितनी पर्याप्ति? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। जब तक श्वासोच्छ्वास नहीं आता है, आहार है, शरीर है, इंद्रिय है, अपर्याप्त है। आहार में भी जान श्वास से आती है, शरीर में भी जान श्वास से आती है, इंद्रियों में भी जान श्वास से आती है। श्वास नहीं है वहां पर तो कुछ भी काम आने वाला नहीं, कुछ भी काम आने वाला नहीं। इतना श्वास का रिश्ता है तुम्हारे साथ। 10 प्राण है, कितने प्राण है? 10 प्राण है। लेकिन 10 प्राणों का कंट्रोल किसके हाथ में है? तो श्वासोच्छ्वास बल प्राण के हाथ में। चाहे मन का बल प्राण हो, चाहे वचन का हो, चाहे काया का हो, कंट्रोलर तो केवल श्वासोच्छ्वास है। और ये सारी चर्चा किस लिए चल रही है? आश्रव संवर निजरा बंध करने वाला कौन है? जीव। कौन है? अब ये श्वास तो है ही है। एक श्वास चल रहा है कर्मोदय से। जैसा जैसा कर्मोदय हुए उतना उतना श्वास चले। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से श्वास चलता है। बोलो बोलो भाई, लोग नहीं बोल रहे। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से श्वास चलती है। और इसमें शक्ति किससे आती है? अंतराय वीर्य कर्म के कारण से। वीर्य उसके लिए क्या लगता है? शक्ति के लिए। इसलिए बल प्राण का जहां विषय आएगा वहां उधर चला जाएगा। उसको कैसे तोड़ना है? थोड़े हेवी हो गए आज, थोड़े से सो वाटे कटे तो भी है ना, घनो हेवी हो गए लगे ना, है ना? क्या लग रहा है? वो हजम नहीं हुई हो तो कई गलत है मालूम भेजे, है ना? हजम हो जाए तो अच्छा है, हजम हो जाए तो अच्छा है। लेकिन आज आपके साथ एक अनूठे विषय पर ओपनली चर्चा शुरू हुई। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी इस सब्जेक्ट की, मैं तो प्लानिंग करके आता भी नहीं हूं,
और मैंने कभी ये विषय इतने ओपनली लेने का सोचा भी नहीं, लेकिन गुरुदेव की भूमि, गुरुदेव जो चाहे वो कराए। तो ये श्वासोच्छ्वास का खेल है। किसका खेल है? कितना दरवाजा था ने श्वास लेवन का? दो दरवाजा है ना। कौन तो दरवाजे खुले हैं, कौन तो दरवाजे बंद है, बता सकोगे? मालूम से नहीं पड़े था ने कौन तो दरवाजे खुले हैं, कौन तो दरवाजे बंद है। अब कैसे घर के मालिक है कि घर कौन तो दरवाजा खुल्लो है और कौन तो बंद है, जो कोई मालूम नहीं है। एक स्वर को जीव स्वर कहते हैं और एक स्वर को अजीव स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव और अजीव। जिधर से श्वास चलता है वो जीव स्वर है और जिधर से श्वास नहीं चलता वो अजीव स्वर है। और इन दोनों को जो जान लेता है, तया गयम बहुव्यम सब जीवान जानई तस्कालिक में गया। जो जीव और अजीव को जान लेता है वो सारी गतियों को जान लेता है। ओके, बस अब जिस अठे से रुको है ना, अभी तो बहुत हो गयो है ना। क्या हो गया? बहुत हो गया। क्या प्रयोग करूंगे आज ना? देखते जाना है ना, देखते जाना आजकल, देखते जाना। भूख लगी ना जरा देख जो कौन तो स्वर चल रहा है, प्यास लगी ना जरा देख जो स्वर कौन तो चल रही है, किरामते गुस्सा होने लग गया देख जो जरा स्वर कौन तो चल रही है, कोई सामने आयो ना लागे कि माथो सनक रही है देख जो स्वर कौन तो चल रही है ना। ये ऐसा गणित है थोड़ा सा। मुझे पता है कि विषय तो शुरू हुआ है और चलेगा और दो तीन दिन, तो अभी पहले मंगल पाठ और फिर बाद में सारी जानकारी।

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुम सा।

0: बज्जा आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया
1: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया
0: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया
1: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया
0: आएगो आएगो आएगो ये क्या हो गया
2: पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोलाचा जणू अंश सोन्याचा पाणी वाचवा पाण्याचा पुनर्वापर करा ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा.